0: अच्छे बेटे अब तू जाके सो जा।
1: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊं माँ?
0: आओ आओ बेटे, मैं तुम्हें सुना दूं।